0: Hello, Air India.
1: Air India. What? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. क्या बात?
0: इसी में फोन से बताया कि फ्लाइट नंबर 125 में टाइम बम लग गया.
1: What?
2: मैं देख रहा हूँ.